मुंदा संतोख सरंपत झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते

का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतपुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकरे कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अब रच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेते उठ बतुत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु जितव सरणी।

निगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देहे को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

0: माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप मोहब्बत निभाता है। खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।
1: But this Father's Day, let's celebrate.

बिल्कुल, मैं तो किशोरदा की मतलब फैन हूँ, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उसके साथ साथ मैं काफी अच्छे दूसरे सिंगर्स की भी फैन हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेजी लम्हे पे आप हैं निलुफर के साथ ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स। ऑलराइट, तो बहुत अच्छे अच्छे गाने लाइंड अप है बिल्कुल आपके लिए 12 बजे तक। ओके, और आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं। रहीम इज ट्यून्ड इन ऑल द वे फ्रॉम युगांडा एज ऑलवेज कमिंग अप विद हिज ब्यूटिफुल शेर व शायरी। रसीला भी ट्यून्ड इन है कार्टीना से, सॉरी फ्रॉम किसुमो, कार्टीना से हमारे चिराग ट्यून्ड इन होते हैं। और सिमरन आपको भी गुड मॉर्निंग। के इज ट्यून्ड इन ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, आपने भी बहुत अच्छा मैसेज भेजा है कि फ्रॉम के एंड कुंजन नेहा जानवी लिसनिंग ईस्ट ऑल द वे फ्रॉम मांडवी। हाउ नाइस, कच्छ का स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्ती पर कोई गाना, तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी। आई मिस यू टू के एंड आई होप यू आर कीपिंग वेल। आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं। रूपल भी ट्यून्ड इन है, आई हैव गॉट अ लवली मैसेज हियर फ्रॉम श्रुति एंड फ्रॉम वसीम इज़ वेल। फरजाना थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल मैसेज, आई मिस यू टू। जयश्री किरित कनानी जी, आई हैव गॉट टीना फ्रॉम मुंबासा, आई हैव गॉट हरीश एंड वृतिका ऑल्सो हु इज ट्यून्ड इन ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। आई एम एब्सोल्युटली लविंग योर कंपनी, कीप दोज मैसेजेस कमिंग इन, ठीक है। और के ने बहुत अच्छा सा शेयर भेजा है कि एक कमरा कुछ गाने, खिड़की के पास बिखरी कुछ किताबें और खिड़की के बाहर एक पूरा शहर, एक पूरा शहर अनजान मुझसे और मेरी कहानी से। वाह, दैट इज ट्रू।

0: छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं।
1: लेजी लम्हे पे आप हैं निलुफर के साथ ऑन ईस्ट एफएम केनियाज़ प्रीमियर एशियन मिक्स। ओके 10:20 हो गए हैं, संडे मॉर्निंग है, क्या प्लान है? जलेबी गाठिया और कचौरी के अलावा आपके और क्या प्लान्स है? आई थिंक संडे का मोस्टली वही प्लान होता है। बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, कीप दैट कमिंग इन। जगू आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और रहीम कहते हैं, गुलजार साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि पलक से पानी गिरा है, पलक से पानी गिरा है तो ओस गिरने दो, कोई पुरानी तमन्ना पिघल रही होगी। दैट इज वंडरफुल। एक और आपने बड़ा अच्छा भेजा है कि ना रोज बात ना मुलाकात, ना रोज बात ना मुलाकात, फिर भी हम यार एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, हम हमारी दोस्ती की हसीन यादों में एक चाय हर रोज पिया करते हैं। वंडरफुल। आई थिंक चाय एक ऐसा एहसास है, नॉट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ चाय, बट इट इज़ ट्रू एंड आई थिंक चाय लवर्स वुड प्रोबेबली कनेक्ट विद दिस मोर। कॉफ़ी वालों का तो रहने ही दो, मुझे नहीं पता, बट चाय एक इमोशन है। चाय इज़ नॉट जस्ट अ ड्रिंक और अ बेवरेज, आई फील चाय बहुत सारे इमोशंस के साथ कनेक्ट करती है, स्पेशली अगर आप इंडिया में कल्चर देख लो। आई थिंक पाकिस्तान में भी वो कल्चर है एंड प्रोबेबली इन मेनी हाउस होल्ड्स इवन हियर और अक्रॉस द ग्लोब। ओके के खुशी है तो चाय पिए, दुख हो रहा है कोई चीज़ की ट्रेजेडी हो गई चाय पी लें, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। कोई सेलिब्रेशन है चाय हो जाए, यू नो, या कोई सलाद छोड़ के ही चला गया हो तो जाने दो, चलो चाय पीते हैं, यू नो। हर अलग अलग एहसासों का, अलग अलग मोमेंट्स पे, अलग अलग सिचुएशन में चाय का दौर तो जो है वो चलते रहना चाहिए। तो आप भी चाय इन्जॉय करो और मैं भी पीती हूँ स्टूडियो में, ठीक है, मैं लेकर आई हूँ घर से आज गर्मा गर्म चाय। एंड लेट्स इन्जॉय सम वंडरफुल क्लासिक्स ऑन ईस्ट एफएम।
2: ईस्ट एफएम केन्याज़ प्रीमियर एशियन मिक्स।
3: माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप मोहब्बत निभाता है, खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।
4: But this Father's Day, let's celebrate Dad. What would happen if you gave him an apron and a spoon?
5: Let's find out in the biggest annual cooking battle, the East FM Kuroga with Dad edition on 21st June.
6: It's simple. Form a team with your father and his friends, create a cool team name and psych song and register with us.
7: It will be a day filled with food, fun and fabulous prizes to win. Register by calling or sending us a WhatsApp message on 0701-106-106. Team registration is at 10,000 Kenya shillings. East FM Kuroga with Dad. This 21st of June, it will be unforgettable.
8: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
9: Our client is seeking a detail-oriented and experienced full-time accountant to provide financial oversight, ensure statutory compliance, and support management through accurate and timely financial reporting. Bachelor's degree or diploma in accounting, finance, or a related field, and proven experience as an accountant, preferably in an SME environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
8: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.

हम दोस्ती की बात करें और ये गाना ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता. के आई होप यू एंजॉयड द ट्रैक. रसीला, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा है. मैं कोशिश करूंगी ठीक से पढ़ूं क्योंकि हिंदी में है. अगर मैं ये नहीं पढ़ पाई, मेरी हिंदी टीचर बोलेगी मैंने तो सारा सीखा कि क्या फ़ायदा हुआ. कि समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है. समस्या का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ है. दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है. वे खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगह भूल जाती हैं. अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर फैलेंगे जरूर. ओके, फलेंगे जरूर. ओके, कभी ये सोचकर मत जियो कि कल हमारा क्या होगा, बल्कि ये सोचकर जिया करो कि जो कुछ भी हम आज करेंगे उसी से हमारा कल होगा. दैट इज़ वेरी ट्रू. यू नो, ह्यूमंस, हम जब कुछ करते हैं हमको लगता है नहीं उसी टाइम रिजल्ट मिल जाए, उसी टाइम उसका कुछ फ़ायदा मिल जाए. वैसे आधे काम हम फायदे के लिए करते हैं कि ये करेंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा. बट जैसे अपने गिलहरियों का एग्जाम्पल दिया, गिलहरियाँ आर स्क्विरल्स एंड स्क्विरल्स, येस, दे हैव द हैबिट ऑफ हाइडिंग द नट्स, यू नो, द बीज जिसे कहते हैं हिंदी में, ज़मीन में छुपाती थी और फिर वो भूल जाती है मैंने कहाँ छुपाया. इमेजिन, वही से पेड़ लगता है.

तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? इसमें दो तरह की मोहब्बत को यू नो बताया गया है कि मोहब्बत बड़े काम की चीज है। वाह वाह कौन सी चीज है वो? चीज कटलेट की बात कर रही है सिमरन अभी, तो वो वाली चीज नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, कि मोहब्बत बड़ी काम की चीज है और दूसरा ये बेदाग बेनाम चीज है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, अजीब ही कुछ चला आ रहा है सिलसिला। तो आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? ठीक है, ओके, वी आर गोना गो अहेड एंड एंजॉय अनदर ट्रैक पंकज उदास अनुराधा पौडवाल की आवाज में। कमिंग अप इज आल्सो द क्विज, ओके, यादों का गुलदस्ता इन अ बिट। कीप इट ईस्ट एफएम, यू आर ऑन लेजी लम्हे विद निलोफर।

दिस इज वन ऑफ दोस वेरी रेयर सॉन्ग्स ऑफ पंकज उदास. हम जब भी पंकज उदास की बात करते हैं तो उनकी गजलें याद आती हैं या उनके कुछ पॉप सॉन्ग्स ही बिकेम क्वाइट अ हिट. बट ये बहुत ही यूनिक ट्रैक है उनका, वंडरफुल कॉम्बिनेशन विद अनुराधा पौडवाल. गवाही फिल्म से है, 1989 में ये फिल्म आई थी और गवाही आई वुड से वॉज वन ऑफ दोज फिल्म व्हिच वॉज वेरी रेयर, लाइक नॉट अ वेरी बिग कमर्शियल सक्सेस एंड येट इट डिड वेरी वेरी वेल. अब गवाही में एक बहुत स्पेशल बात है कि इसमें जो एक्टर हैं वो है डायरेक्टर शेखर कपूर, और शेखर कपूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. स्पेशली आई डोंट नो इफ माई मम इज़ लिसनिंग, शी इज़ एक्चुअली वेरी अनवेल, तो प्लीज़ मेरी मम्मी की हेल्थ के लिए ज़रूर दुआ करना कि वो ठीक हो जाएँ. तो मम एंड मी कुड कनेक्ट विद दिस. शेखर कपूर लुक्स एग्जैक्टली लाइक माई डैड, सो वेन एवर आई सी शेखर कपूर तो मुझे अपने पापा उनके अंदर नज़र आते हैं. तो ये फिल्म के अंदर जीनत अमान है शेखर कपूर के साथ, रंजीता कौर है, आशुतोष गवारीकर है जो वो भी डायरेक्टर है. सो इट वॉज बेस्ड ऑन 1934 प्ले, एक प्ले आया था द नाइट ऑफ जनवरी 16th एंड वॉज अ कोर्ट रूम ड्रामा. सो उस पर बेस्ड है ये फिल्म, अ वेरी रेयर यूनिक फिल्म. ऑल राइट, तभी आप मुझे बताओ ये कौन सा गाना है मैंने पिक किया है. बहुत ही कमर्शियल ट्रैक, बट आई डोंट नो इफ यू कैन रिमेंबर, लेट्स सी. तो ये बड़ा अपलिफ्टिंग सा मोटिवेशनल ट्यून है, ठीक है, और बहुत सारी मिलियन रीजंस हैं जिंदगी जीने के लिए. दैट्स व्हाट द ट्रैक टॉक्स अबाउट. ओके, कि हम कहते हैं ना क्या जी के फायदा ऐसी जिंदगी का, कोई एक चीज़ के वजह से, अरे नहीं जीना हमको नहीं. ये गाना आपको जिंदगी जीना सिखाता है, फाइंडिंग जॉय मीनिंग एंड पर्पज इन लाइफ. ओके, और ये फिल्म आई थी 1988 में, रेखा का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस. एंड दिस फिल्म वॉज बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज रिटर्न टू ईडन इन 1983. सो रेखा like a brilliant character. I think this was one of her best performance in her entire career. So aap mujhe batao kaun sa gaana hai, kaun si film hai, give me a call.

अरे वाह, इतने सारे मैसेजेस, आप तो बिल्कुल बॉलीवुड की इंसाइक्लोपीडिया हो. मुझे लगता था मैं ही बॉलीवुड क्वीन हूँ, आप भी कुछ कम नहीं हो. आई हैव गॉट सो मेनी करेक्ट आंसर्स बट सम रॉन्ग आंसर्स इज वेल. ठीक है, कहीं मूवी का नाम सही आ रहा है तो गाना नहीं, बट चलो कोई नहीं. ठीक से मैं एक बार आपको और समझाती हूँ. तो ये जो फिल्म है 1988 में आई थी जैसे मैंने कहा, और रेखा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस. तो द अदर हाफ ऑफ द फिल्म शी इज़ लाइक रियली, you know, she has this scar and she's going through this inferior complex, bolte hai na ki unko insecurity unke looks ki wajah se, and she really suffers because of that as well. Her husband dies and the second person that she's involved with, he really messes up her life, okay? And then she does a comeback as the most glamorous woman. वो glamorous तो है ही, साथ साथ जो उसकी वो band बजाती है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे सब देख कर. स्पेशली रेखा मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है. इस फिल्म को 7 nomination मिले at the 34th Filmfare Award for Best Film, Best Director, and she, रेखा, won her second Best Actress Award that happened in August 1988. Alright, so आप मुझे बताओ. तो इस फिल्म में बहुत सारे गाने हैं, बट स्पेशली एक ट्रैक है जो जिंदगी जीने के लिए बताता है कि मतलब आप एक इंसान की वजह से या एक हादसे के वजह से या आप जीना मत छोड़ो. जिंदगी में बहुत कुछ रीजंस हैं. जैसे हमने शुरू में सरस्वती चंद्र का गाना बजाया था, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है कि वो गाने में भी लिरिक्स रहते हैं कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए. एंड एग्जैक्टली दिस सॉन्ग सेज द सेम थिंग्स. अ लॉट ऑफ कनेक्शन टुडे कि जिंदगी में और भी बहुत रीजंस हैं प्यार और रिश्तों के अलावा, कि यू नो देर आर मेनी पर्पजेज एंड मेनी जॉयज दैट यू कैन फाइंड इन लिटिल लिटिल थिंग्स. मुझे एक मैसेज आया है, कहीं ना कहीं ये लॉस्ट हो गया है मेरे मैसेजेस में. आपने कहा आप दोस्ती की बात कर रहे हैं तो एक और गाना हो जाए, तो चलो किशोरदा की आवाज़ में गाना. आई थिंक दिस इज वन ट्रैक विच आई एब्सोल्युटली लव. इट इज वन ऑफ दोज ट्यून्स आई कैन लिसन टू अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन डेली बेसिस. या दैट मच आई लव दिस सॉन्ग एंड आई नो यू लव इट टू. लेजी लमे पे आप हैं निलोफर के साथ ऑन ईस्ट बैम कैनियर्स प्रीमियर एशियन मिक्स. जल्दी जल्दी मुझे बताओ कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म है.

0: कि हम जैसे पहले दो गाने रिलेट कर रहे थे, जैसे जो गाना मैं ढूंढ रही हूँ खून भरी मांग का, एंड यस आई गॉट अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर खून भरी मांग, बट अ लॉट ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज वेल अबाउट द सॉन्ग. दिस इज अनदर सॉन्ग दैट आई वाज लुकिंग फॉर, बट आई डिड गेट क्वाइट अ फ्यू राइट आंसर्स. के और से पहले जो हमने सुना कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए नहीं, तो वो गाने कहीं ना कनेक्ट करते. एट द सेम टाइम दिस सॉन्ग ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइफ रियलिटी. कुछ लोग जो होते हैं आपकी लाइफ में जब आते हैं, ठीक है ना, और किसी वजह से चले जाते हैं, हो सकता है वो उनका टाइम या उनका रोल जो है आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है, एंड दे मूव्ड ऑन एंड इट्स ओके, यू नो इट्स फाइन, दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. एंड सम आल्सो लीव दिस वर्ल्ड एंड गो अवे, एंड विच एवर कैरेक्टर्स दैट दे प्लेड इन योर लाइफ, वेदर इट्स योर क्लोज रिलेशंस, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ अदर कनेक्शन, वो इररिप्लेसिबल भी होते हैं. चाहे आप उसके बाद हज़ारों लोगों से मिल लें, ताल्लुक बना लें, यू नो कनेक्ट कर लें, बट वो आपको उस चीज का एहसास दिलाते रहेंगे कि दे कैन नेवर रिप्लेस दैट वन पर्सन. सो आई अंडरस्टैंड जबीन, थैंक यू फॉर सेइंग दैट यू आर लविंग द शो एंड यू लविंग द म्यूजिक, एंड यस द सॉन्ग इज आल्सो क्वाइट रिलेटेबल. तो जो गाना मैं ढूंढ रही थी खून भरी मांग का, इट इज लाइंड अप इन द नेक्स्ट आवर एज द फर्स्ट सॉन्ग इन द नेक्स्ट आवर, एंड इट इज नॉट हंसते हंसते कट जाए रस्ते, वो भी बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है फिल्म का, बट दिस इज अनदर वन. एंड एक्चुअली जीने के बहाने लाखों हैं में रेखा नहीं है, एक्चुअली इट इज़ सोनू वालिया जो उस वक्त मिस इंडिया बनी थी, एंड शी वॉज कास्टेड इन खून भरी मांग ऑपोजिट कबीर बेदी. सो रेखा, कबीर बेदी, राकेश रोशन, सोनू वालिया, वंडरफुल कास्टिंग. सो दैट्स द ट्रैक दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट, एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वंडरफुल कंपनी, कीप दैट गोइंग. लेजी लम्हे पे आप हैं निलुफर के साथ ऑन ईस्ट FM.
1: ईस्ट FM. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel.
2: Politicians have been urged to embrace respect and maturity in their engagements with one another. Speaking amid growing concerns over the increasing use of inflammatory language in political discourse, Machakos Deputy Governor Francis Mwangangi warned that continued exchanges of insults among leaders could have serious consequences for the country. Mwangangi said the culture of disrespect is gradually filtering down to ordinary citizens, and if left unchecked, checked could fuel tensions and undermine social cohesion.
3: Anything that comes out of your mouth inaenda kwa raia, you cannot recall it. Tafadhali tukue na maturity in what we are doing. Siasa tutaendelea kufanya. Not at any given time we will have one governor.
2: Members of the public have been urged to read the Finance Bill 2026 and avoid misinformation that is being peddled on social media. Molo Member of Parliament Kimani Kuria, who chairs the Finance Committee in the National Assembly, cautioned the public against relying on fake or altered copies of the bill circulating online.
4: Vile sheria hii imetungwa hivyo, inamaanisha ya kwamba kila mwanabiashara yeyote unapofanya supplies, itabidi uishu hiyo tax invoice. Lakini maoni mengi ambayo tumepata kutoka kwa public wakati tumefanya public participation, wanasema tuweze kuipia threshold.
2: Every day parents place food on the table, believing it will nourish their children. But according to the WHO, unsafe food is making millions of children sick. Children under 5 years face nearly 3 times the risk of illness from contaminated food compared to older children and adults. Although they make up just 9% of the world's population, they suffer almost 1/3 of all foodborne diseases, from severe diarrhea to exposure to harmful chemicals that can damage developing brains. And safe food continues to threaten the health and future of the world's youngest generation. Maria, not her real name, takes her HIV medication every day. It keeps her healthy and alive, but for 9.2 million people around the world, that treatment remains out of reach. According to a new United Nations report, 630,000 people died from AIDS-related illness in 2024 alone, more than double the global target. Despite major advances, the report shows that the world is falling dangerously behind in ending AIDS. To Sports News now, Harambee Stars head coach Benni McCarthy has delivered a blunt and uncompromising assessment of his team's recent performance, demanding an immediate response ahead of today's high-stakes rematch against Lesotho. Speaking from the team's training camp at Lucas Moripe Stadium, the South African tactician made it clear that the shortcomings witnessed during Thursday's frustrating 1-1 draw will not be tolerated in the second leg of the international friendly series. Reflecting on his side's inability to protect an early lead secured by Franco Odhiambo, McCarthy did not mince his words about the team's tactical drop-off. He identified a glaring lack of game management as a key factor that allowed Lesotho to claw their way back into the contest. That's the news update on East FM.
1: East FM News. Lazy Lam here. on East FM.
0: All right, lazy lamhe ka aakhri daur hai ye. Will you believe it's already 4 minutes past 11? Waqt to pata nahi kaun si hawa ke pehlu pakad ke chal raha hai. Like, imagine we are in June. Oh my God, where did the 6 months go? I have no idea. The time is really flying and yeah, very crucial month. Bahut sare students ke exam hai, including meri beti ke. So let's pray that our students, our tutors do well, you know, in their education, in their careers that they're looking forward to. And I want to say a little prayer that all the students, you know, jo bhi exams de rahe hain, jis grade ke bhi hain, wo acche se karein, and they pass out in flying colors. Rahim ne ek bahut acha aur bhi sher bheja hai ki khamosh hawaon mein ehsaas bahe, dil ke adhure se kuch khwab rahe, barish ki boonde ye gungunane lagi, ki bite hue lamhe phir yaad aane lage. चेहरे पे ठहरी हुई मासूम सी रोशनी, आंखों में जैसे कोई अधूरी कहानी, कुछ दर्द पुराने भी मुस्कुरा उठे, कुछ जख्म बारिश में फिर से भीग उठे. What a beautiful message. Thank you so much. And yes, this is the song. और ये गाना बिल्कुल आप सुनो और ध्यान से सुनो, ठीक है? कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि जिंदगी कहीं रुक सी गई है, अटक सी गई है और monotonous सी हो गई है, then this song is for you and me to uplift our mood, to uplift our lives. Because yes, जीने के बहाने तो लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं. बहुत ही प्यारी है ये जिंदगी. Let's live it, okay?

बिल्कुल सियार कि हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है. जस्ट इमेजिन दीज लिरिक्स, यू नो इट्स लाइक एवरी वर्ड एवरी सेंटेंस ऑफ द सॉन्ग यू कनेक्ट विद यू नो योर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. कहीं ना कहीं आपके बचपन के साथ, आपके यू नो ग्रोइंग अप डेज के साथ, आपके वो पहला प्यार या वो एक पहला रिश्ता जो आपको बनता है या पहली दोस्ती, जो भी है लाइफ की ऑब्स्टिकल्स, हर चीज़ के साथ कहीं ना कहीं ये गाना कनेक्ट कर सकता है. इट्स जस्ट सो वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच. यू आर इन्जॉइंग द सॉन्ग्स एंड आई एम लविंग योर कंपनी इज़ वेल. नाजनीन, आपने बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा है आपकी सिस्टर जबीन के लिए कि जबीन थैंक यू फॉर बींग माई एब्सोल्यूट एवरीथिंग, यू हैव स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन. जबीन आई होप यू आर लिसनिंग, एक्टिंग एज माई मदर, फादर, ब्रदर, बेस्ट फ्रेंड एंड दादी. स्पीकिंग ऑफ द स्टेशन, आपने मेरी भी थोड़ी सी तारीफ कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड यू नो वॉट, आप कह रहे हैं कि आई शुड गेट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड फॉर दिस from the management. You know what my reward is? This message that you've sent me. This is my reward. Baki mujhe aur koi reward ki zarurat nahi hai. Baki sab to theek hai, chalta rehta hai. Ye jo aapne mujhe message kiya ya Friday ko bhi kiya tha, this is my true reward and I truly truly appreciate this. Keep that company going. Kirit Kanani ji, finally I'm going to play your song. You've been asking for this track for the last couple of Sundays and yes, 90s ka behtareen track featuring Aamir Khan and Pooja But it's coming up next on East FM, Kenya's premier Asian mix. Lazy Lame pe aap hai Nilufar ke saath. And this hour also I have another quiz coming up. Bujho to jaane in a bit. So yeah, stay with me. Keep sending your messages. Call me 0711 046 106.

0: मजा आ गया ना ये गाना सुन के, मुझे भी बहुत मजा आया. व्हाट अ ट्रैक, व्हाट अ ट्रैक. इट्स प्लेइंग फॉर यू ऑन ईस्ट एफएम, केनिया's प्रीमियर एशियन मिक्स. एंड बिफोर आई गेट इनटू द क्विज, आई हैव समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर. नाउ दिस मंथ जून इज ऑल अबाउट आवर लवली लवली मेन. ओके, कहीं ना कहीं बेचारे जो हमारे मेन होते हैं घर के, या तो आपके भाई हैं, शौहर हैं, या फादर हैं, या फ्रेंड फिगर हैं, जो भी है, वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेते हैं. औरतें हमको ना अटेंशन लेने की बहुत आदत भी है, और वो ठीक है, वो भी चलो कोई बात नहीं. बट फादर्स आई फील ऑलवेज आर डूइंग थिंग्स फ्रॉम द बैक सीट के भाई ठीक है, आप सारी लाइमलाइट ले लो, हम तो हमारा फर्ज निभाते रहेंगे. दैट्स व्हाट फादर्स ऑल अबाउट. वेल जून देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक तो फादर्स डे है 21st को, ठीक है ना, और दूसरा मेंस मेंटल हेल्थ मंथ ऑल्सो दिस इज. सो यस, आई हैड डन एन एंटायर कैंपेन लास्ट ईयर. आई रिमेंबर वी गॉट पीपल ऑन बोर्ड टू टॉक अबाउट दिस and share their views, men who have actually gone and seeked help, therapy whenever necessary and have been vocal about it. I got managed to get some therapists who spoke about their male patients and clients, and then jo bahut hi shy hue ke are hum to aadmi, hum kya hai, sham ko char doston ke sath baith jayenge sab kuch theek ho jayega, aisa nahi hota hai. If you cannot speak to your family, if you cannot speak to your spouse, or you cannot speak to your friend, you need to go and speak to somebody professional. It's very very important. Aur dusra, coming back to the most exciting day, that is the Father's Day. Now this is the month to honor and celebrate all the amazing dads out there. East Women Bow Box has teamed up to make this celebration truly unforgettable. Okay, so East Fem Dads Karoga Festival is going down on the 21st, 10 baje se subah at Bow Box. Hamara show bhi wahin se hoga. So come and celebrate fatherhood with great food, great music and a lot of fun. Okay, so get your spot, apni team banao. Okay, send your team name and team song to 07 01 106 106. That's our WhatsApp number, and complete the payment of 10,000 shillings as instructed, because that's how you register. And 10 logon ka aap group banao, ya kam bhi ho sakte hain aapki team mein, no problem, but make sure it's a team and come and participate. You can also come and enjoy as a spectator, as an audience, and just enjoy the Karoga. It's a very special day. It's East FM Dads Karoga Festival on the 21st of June from 10 a.m. at Bow Box. So come share the great moment and celebrate dads in a very very special way. All right, so I have a lovely song coming up of aapke bhai aur meri jaan, yani ke Salman, and I've picked up the lyrics in between. Aap batao ki ye kaun sa gana hai. I think very easy, ke sari duniya se hum root ke, अरे या मोहब्बत करे टूट के, उड़ न जाए कभी क्या पता कोई भवरा मुझे लूट के. भवरा नहीं है, मेरा नाम है परवाना. नाउ यू टेल मी व्हिच सॉन्ग इट इज.
1: ईस्ट ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स.
2: माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप मोहब्बत निभाता है. खुद कितनी भी तकलीफ में हो, पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है.
3: But this Father's Day, let's celebrate Dad. What would happen?

तो ये बहुत ही स्पेशल ट्रैक है वसीम की तरफ से फॉर हिज पेरेंट्स. आज हुसना और उनके डैड अल्ताफ का हैप्पी एनिवर्सरी है. सो विशिंग यू बोथ हुसना एंड अल्ताफ अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. एंड दिस वाज स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर सन वसीम. एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज एंड लव फ्रॉम मी एंड द टीम ऑफ ईस्ट FM. हैव अ फैंटास्टिक एनिवर्सरी और चुप चाप बड़ा वाला केक मुझे भेज देना, ठीक है ना, एनिवर्सरी का. ऐसे नहीं गाने बजते, ओके. आई एम जस्ट किडिंग. हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर एनिवर्सरी विद द फैमिली. एंड फॉर नाउ विच सॉन्ग इट इज, यस, गेटिंग इन क्वाइट अ फ्यू राइट आंसर्स बट सम रॉन्ग आंसर्स एज वेल. आई थिंक बहुत ईजी है. सारी दुनिया से हम रूठ के, अरे या मोहब्बत करे टूट के, उड़ न जाए कभी क्या पता कोई भंवरा मुझे लूट के. भंवरा नहीं मेरा नाम है परवाना. सो यू टेल मी विच सॉन्ग इट इज. एंड फॉर नाउ I have this wonderful tune coming up from movie Aashiqui. It's 44 minutes past 11. Lazy Lame pe aap hain Nilufar ke saath on East FM.

उनकी जो शानदार पर्सनालिटी है वो उनके गाने में झलकती है. आप उनका चेहरा देख लो, कोई भी शो में कहीं भी वो गा रहे हैं कुछ बात कर रहे हैं, हमेशा उनका चेहरा वो स्माइलिंग वाला है. एंड ही इज नॉट पुटिंग ऑन दैट फेस बिकॉज वी मेट शान कपल ऑफ ईयर्स अगो व्हेन ही हैड कम डाउन टू परफॉर्म इन नैरोबी और काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रहा बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम इन दैट इवेंट. सो वी एक्चुअली पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, फिर होटल पे यू नो वी हैड दिस मीडिया लाइक अ होल इंटरव्यू एंड वी वर लाइक टेकिंग हिम टू द वेन्यू. एंड नैरोबी में हमारे जो केनिया पावर है वो तो एकदम महान है ही, उनकी तो क्या कहने. तो लाइट चली गई थी बीच शो में और जनरेटर का भी कुछ इश्यू हो गया था. इमेजिन दिस जेंटलमैन बींग सच अ बिग स्टार, ही एक्चुअली सैट डाउन एट द एज ऑफ द स्टेज और वो ऑडियंस के लिए ऐसे ही गाने लगे बिना कोई लाइट म्यूजिक के. ही वॉज जस्ट सिंगिंग ऑर्गेनिकली एंड एवरी वन वॉज जस्ट सिंगिंग अलॉन्ग विद हिम एंड दैट्स वाई शान इज सच अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट. बिकॉज आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आई थिंक ये सबके लिए फिट बैठता है कि चाहे आपके अंदर टैलेंट और लक कितना भी कूट कूट के भरा हो, आप बहुत ही दुनिया के करोड़पति इंसान हो, अगर आप में इंसानियत नहीं है और अगर हम्बलनेस नहीं है ना दूसरों को अच्छा ट्रीट करने की और अच्छा बनने की, लाइक यू नो टू बी गुड टू अदर्स, देन यू आर एब्सोल्यूट जीरो. लाइक वेल आई बिलीव इन दैट. आई हैव गॉट अनदर लवली शेयर फ्रॉम रहीम. कहते हैं कि ये जायकेदार लब तेरे बेहद ही लजीज हैं, ये जायकेदार लब तेरे बेहद ही लजीज है, इलायची वाली चाय से तू मुझे अजीज है. इलायची वाली चाय की तो क्या कहने, थोड़ा सा उसमें अदरक भी डाल देना बस फिर तो बेस्ट है बेस्ट.

0: मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं दिलीप, उन्हें बहुत अच्छा शेर भेजा है और काफी अच्छी शेर व शायरी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुझे क्या सुनाए दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। ओके, तुझे क्या सुनाए दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वाह, दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। हैव अ ग्रेट संडे। दिस इज द सॉन्ग दैट एग्जैक्टली आई वॉज लुकिंग फॉर फ्रॉम जब प्यार किसी से होता है, फीचरिंग द वन एंड ओनली सलमान। As we know, of course, ये फिल्म की स्टार कास्ट और भी बहुत अच्छी है, फिल्म भी बहुत अच्छी है, एंड आई होप यू एंजॉयड द शो। आई नो यू डिड बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव गॉट टुडे इज आई एम काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड एंड ट्राइंग टू डाइजेस्ट। सो शुक्रिया तहे दिल से आप सबका। आप अपना दिन इंजॉय करो, अपना वीकेंड। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी कल। अभी हमारा जो शो है इट इज़ अ रेट्रो टू राइट नाउ विद मी फ्रॉम 1 to 4 PM ओनली ऑन ईस्ट FM। सो जॉइन मी देयर, एंड ऑफ कोर्स हमारे अलाउद्दीन जी इज ऑल्सो अप नेक्स्ट विद हिज वंडरफुल प्रोग्राम विद हिज वंडरफुल गजल्स अप नेक्स्ट। सो कीप इट ईस्ट FM एंड हैव अ ग्रेट वन। सी यू सून।
1: ईस्ट FM

ईस्ट एफएम केन्या की मुकद्दम एशियाई संगीत तरंग, आप जैसे खुशबू जैसे सुनने वालों का चाहिदा रेडियाई इदारा। दिन के 12:11 हुए हैं, हाजिर है ईस्ट एफएम की हर दिल अजीज शायराना दिल बराना आशिकाना अंजुमन। खिदमत गुजारी में आपकी मुसर्रतों के सौदागर अलाउद्दीन कुरैशी। कबूल फरमाइए हमारा प्यार दुआ और मुअद्दबाना सलाम। पहला हिस्सा एक सौगात शायराना और आज ये सौगात बन के आई है आपके लिए रोमानी गजल अबशार। तो आइए सुनते हैं ईस्ट एफएम पर अंजुमन।

उनको देखती है नजारा किए बगैर, आंख उनको देखती है नजारा किए बगैर, पर्दे में छुप गए हैं वो पर्दा किए बगैर। हर चंद दर्देश का दरमा नहीं मगर, बनती नहीं है फिक्र मदादा किए बगैर। हमको भी देखना है कि ये मुनकरीन इश्क, हमको भी देखना है कि ये मुनकरीन इश्क कब तलक रहेंगे तेरी तमन्ना किए बगैर। आपने सुना अमानत अली खान को। अब बारी आती है नूर जहां की, दिल के अफसाने लिए हुए।

मेरे दिल से न पूछिए क्या है, मेरे दिल से न पूछिए क्या है, बज़्म में ना साजगार की रातें, बिजलियां भी हैं देख कर लर्जां, उफ दिले बेकरार की रातें, आह ऐसे में याद आती हैं वो सुकून वो करार की रातें। आप सुन रहे थे नूर जहां को। अब बारी आती है मैंने पैरों में, फरीदा खानम की।

मैंने पैरों में क्या बांधा के आवाज आ रही है, छननन छननन छननन। उनके बगैर हम जो गुलिस्तां में आ गए, उनके बगैर हम जो गुलिस्तां में आ गए, महसूस ये हुआ कि बियाबां में आ गए। बहार आई, किसी का सामना करने का वक्त आया। संभल ए दिल के इजहारे वफा करने का वक्त आ गया। कहाँ तक खत्म रहता दरमियां पर दिल का फसाना, बिला आखिर दरमियां से इब्तदा करने का वक्त आ गया। अब सुनिए मेहदी हसन को।

नजर आ नहीं सकते। मेहदी हसन के बाद आप सुनेंगे शाहिदा परवीन को दीपक राग क्या है।

दीपक राग है चाहत अपनी, क्यों सुनाए तुम्हें। इसको सुनने के बाद बहार होके रहेगी अया कभी न कभी, चमन को छोड़ ही देगी खिजां कभी न कभी। यकीन है वो बेताबियों से तंग आकर, यकीन है कि वो बेताबियों से तंग आकर करेंगे पुरसिशे दर्दे नहां कभी न कभी। शायद परवीन को सुनने के बाद अब मुनव्वर सुल्ताना को सुनिए, मैं जाने आरज़ू।

ईस्ट एफएम पर आप सुन रहे हैं अंजुमन। दिन का 1:03 हुए हैं। आज आप आध घंटे के लिए सुनेंगे मुन्नी बेगम को।

तुम जमाने के हो हमारे सिवा, तुम जमाने के हो हमारे सिवा, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं। हमसे जिंदा थी जिंदगी कल तक, हमसे जिंदा थी जिंदगी कल तक, आज हम जिंदगी के मारे हैं। जब नजारे न थे निगाहें थी, जब नजारे न थे निगाहें थी, अब निगाहें नहीं नजारे हैं। ईस्ट एफएम पर आप सुन रहे हैं अंजुमन। अब 2 बजे तक सुनिए प्रफुल्ल वरसानी को। प्रफुल्ल हमारे अपने कलाकार हैं और आपके लिए लाए हैं चंद गजलियात जो उनके काफी ज्यादा मशहूर हैं। तो लीजिए सुनिए प्रफुल्ल वरसानी को।